हर की पूजा दुर्लभ है संतो। हे संत जनो, हरी दी पूजा दुर्लभ, दुर्लभ दा पावे जो लभिया ना लभे। कई बार होंदा है कई चीज लभिया लभ जांदी है, पर कहिंदे ने दुर्लभ है, लभिया भी नहीं लभदी। फिर गुरु कृपा कर दे हन, हर

ख्याल बड़ा सुंदर है, हर बिन सब कुछ मैला है संतो, क्योंकि हरि वाहिगुरु दे नाम तो बिना सब कुछ मैला है। ए तन मैला, ए मन मैला, ए तन मैला, ए संसार मैला, इस संसार दा विहार मैला। आ तुसी देखो हर पासे मैल है, इसलिए सानू सतगुरु जी उपदेश देंदे कहंदे ने हर बिन सब कुछ मैला है संतो, क्या हो पूज चढ़ाई, तो किवें पूजा करेगा, की पूजा ली चढ़ावेगा, क्योंकि सब कुछ तो मैल है, सब कुछ मैल है, सुचा की है, क्योंकि असी वो चीज परमात्मा की दरगाह विच अर्पण करनी है जो सुचा होवे। इसलिए सब तो पहले आपा तन सुचा करने, फिर मन सुचा करने, फिर तन सुचा किया जाता है, फिर गुरु दे अर्पण होंदा है। इसलिए आपां उद्यम की करने हैं, कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन भय अरोगा, क्योंकि गुरु की पूजा विच बैठना है, गुरु का सिमरन करना है, अपने आप नू अरोग बना ले, पहले अपने आप नू सुचा कर ले, जिस तक सुचा नहीं तू हुंदा ते गुरु दी अर्पण की करेगा। हर बिन सब

हर साचे भावे स्वा पूजा होवे। बस उस मालक नू पा जाए फिर तेरी पूजा परवान है। पर किस तरह हर

तेरी पूजा प्रवान तां हो सकती है जे तू मालक दा पाणा अपने मन च वसा लै, मालक दा हुक्म अपने अंदर वसा लै। जदों मालक दा हुक्म तेरे अंदर वस गया तेरी पूजा प्रवान हो जाएगी। अगे सतगुरु उपदेश कहंदे ने, पूजा करे सब लोक संतो, पूजा करे सब लोक संतो, सारे लोग पूजा करते हैं क्योंकि हर किसी की इच्छा है कि मैं पूजा करा, पर यह गल वखरी है पूजा प्रवान किसी की चढ़ती है, हर कोई नहीं चढ़ा लेंदा क्योंकि पूजा करने की एक मर्यादा है, एक नियम है, एक लॉ, एक कानून है। जब तक तू उस ला कानून दे विच नहीं आउंदा वह पूजा प्रवान नहीं हुंदी। हुण साहिब कहिंदे ने, पूजा करे सब लोग संतो, मन मुख थाए ना पाई। मन मुख दी पूजा कदे थाए नहीं पैंदी, क्यों? मन मुख कहिंदे ने जिदा मुख गुरु वाल ने, पूजा ते कर रहा दिखावा कर रहा है, लोगों नूं समझ आ रही कि पूजा विच बैठा है, लेकिन वह कहना नहीं मैनू लोग देखण के मैं पूजा कर रहे हैं। कई लोग पगटावा ज्यादा करते हैं। इसे तरह भाई सेवा सिमरन की गल है, जिन्हें सेवा करनी है पगटावा ना करे, सेवा लगा रहे, सेवा लगा रहे। जो तो सेवा च लगे आपे मालक प्रवान कर लेगा। इसे तरह प्रभु की पूजा है, तो पूजा विच लगा रहो, अपना आप प्रगट ना कर, क्योंकि सिमरन कर्म वाला तो आपे प्रगट हो जाता है, उथे कहन की लोड़ नहीं रह जाती।

सच्चे पातशाह प्यारे गुरुदेव सतगुरु साहेब श्री गुरु रामदास जी महाराज इस शब्द दे विच ये दसते हैं कि आप जी की आत्मक अवस्था इस तरह की है

ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲਾਈਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜੀਵਨ ਨਾ ਥੀਏ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਨਾ ਥੀਏ, ਜੀਵਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜਾਏ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਦੇਵ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਇਤਨਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਦੇ, ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਤਨਾ ਵਸਾ ਦੇ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੋ ਸੱਜਣ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸਨ ਵੀ, ਆਓ ਆਪਣੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਫਲੀ ਅਸੀਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਨਾਮ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਪਿਆ ਜਾਏ, ਸਭ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਇਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਭਰਿਆ ਜੋ ਖਿਆਲ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਕਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਚ ਕੀ ਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਨ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਆਖੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਾ ਗਾਹਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦਾ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੀਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਗਾਹਕ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ। ਵੱਖਰ ਨਾਮ ਦੇਖਣ ਕੋਈ ਜਾਏ, ਵੱਖਰ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਦਾਰਥ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹ ਵਸਤੂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਵੱਖਰ ਨਾਮ ਦੇਖਣ ਕੋਈ ਜਾਏ, ਨਾ ਕੋ ਚਾਖੇ ਨਾ ਕੋ ਖਾਏ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕੋਈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ, ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਭਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਖਰ ਨਾਮ ਦੇਖਣ ਕੋਈ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹੈ। ਨਾ ਕੋ ਚਾਖੇ ਨਾ ਕੋ ਖਾਏ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਟੇਸਟ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇੰਟਰਸਟਡ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਨਕ ਕੇ ਘਰ
केवल नाम, ये कल पंक्तियां विचारी सी, नानक के घर केवल नाम बोलिया करो, सिर्फ नाम अल्टीमेटली जो साढ़े हाथ च आएगा वो नाम। और महाराज जी आखते हैं कि नावे जेवड होर दात नहीं। कई लोग आखते हैं वाहगुरु ने सानू बहुत दाता दितियां हुई हैं, पर महाराज जी आखते हैं नाम तो वड्डी दात कोई नहीं है, ये सब छोटियां मोटियां हैं, ये दाता नहीं हैं, ये सगों रब नूं पलाउण वालियां वस्तुआं हैं जिन्हां नूं असीं दाता समझ दे रहे हैं। सच्चे पातशाह आखते हैं नावे जेवड होर दात नहीं, नाम तो वड्डी होर कोई दात नहीं। तो फिर दात मंगनी होवे तो वड्डी ही मंगनी चाहिए है, छोटियां क्यों मंगनिया हुई। ताई महाराज ने आख्या है देह नाम संतोखी है उतरे मन की भुख, कि मैनू नाम ही बख्शो जिस दे नाल मेरिया सारिया ही भुखा खत्म हो जाए, नाम बख्शो। तो नानक के घर केवल नाम। महाराज जी ने आख्या नानक दे घर दे विच केवल नाम है, नानक दे घर दे विच पूजा भी नाम है, पूजा कीचे नाम त्याई है, तीर्थ भी नाम है, तीर्थ नावन जाओ तीर्थ नाम है, दवाई तमाम किस्म दे शरीरक मानसिक रोगों का इलाज करन दे वास्ते भी दवाई जड़ी नाम ही है, संसार रोगी नाम दारू, नाम ही दारू है। साड़ी जिंदगी दे जितने दुख हन पेन सफरिंग्स मिजरीज हन ओ जहर है, ओ जहर नू मारन वाला मसाला भी नाम ही है, दुख मौरा मारन हर नाम। महाराज जी आखदे हन साडे घर दे विच गुरु दी सेवा भी नाम ही है, नाम हमारे पूजा देव, नाम हमारे गुरु की सेव, गुरु दी सेवा भी हमारे ग्रह साडे पास नाम ही है। अते अगर साडी जिंदगी च नाम नहीं है तो महाराज जी कहते हैं ऐसे जीवन का जीण का कोई अर्थ नहीं है, बेशक वो मरे ही जाए उसका कोई अफसोस नहीं है, मरना जाही जिना विसरत राम, नाम बिहून जीवन कौन काम, नाम तो बिना जीवन कहते किस कम है, किस कम है। कहते जल जाओ जीवन नाम बिना। इना पंक्तियां नू थोड़ा जा अपने दिल नू लगन दो, क्योंकि असी सुनन दे आदि हां, सुन सुना तक ही गल ना रह जाए, थोड़ी सोच विचार जागरूकता दे नाल सुनो ताकि ए साडे अंदर थोड़ी जही चोट भी मारन, क्योंकि असी हो पत्थर वर्गे गए हां, चोट लगदी नहीं है, इस करके असी सुन के फिर उसे तरह दे रह जाने हां। महाराज जी ने बाणी च आख्या ऐसा ना होवे कि आप कितने गुस्सा कर लो भी भाई साहब ने कहता असी पत्थर वर्गे हो गए हैं, ये मेरा अपना ख्याल नहीं है, ये महाराज जी दी डायग्नोज है, महाराज जी ने साडे अंदर देखे हैं, वो जानते हैं साडे अंदर किस तरह के हैं। कहते हैं मन कठोर शब्द भेद तू, कहते मन कठोर होए पे हैं साडे, इसनू शब्द के हथौड़े के द्वारा ही तोड़िया जा सकता है, पर मन कई दफा इतने कठोर हो चुके हैं कि ना ते किसी गल का असर ही नहीं होंदा, कि साडे ते इस गल का कोई असर नहीं होंदा। महाराज जी कहते हैं जिनी नाम विसारिया से होत देखे खे, कि असी इतने इम्यून हो चुके हैं महाराज जी की बाणी के इन्होंने शब्दों के तीरां तो, कि गुरु बाबा जी आखते हैं विसरिया जिन नाम ते भोए पार थीए, कहते वो लोग जमीन उत्ते धरती उत्ते बोझ हन जिन्हां ने वाहिगुरु के नाम नूं विसारिया। सो हरेक बंदा अज तो बाद जिसले तुरिया फिरेगा वो सोचे कि मैं धरती उत्ते बोझ हां या की हां, जे नाम भुलाया होया है तो धरती नूं भी तकलीफ दे रहे हां, धरती दे विच भी कॉन्शियसनेस है, ये भी अलाइव है, ये भी जिंदा है। और अगर असी नाम तो सखने हां ते असी इस धरती नूं भी पल्यूट करते हैं, इस धरती नूं भी डैमेज करते हैं, ते इस उत्ते बोझ पाने हैं, तो जे इस उत्ते बोझ पाने हैं ते किसी दिन साडे ते भी बोझ पाएगा।
कर्म का फल जरूर होंगे। बाबा जी ने यह आख्या है, विसरिया जिन नाम ते पोए पारथीए, जिन्होंने वाहगुरु का नाम विसर गया वह धरती उत्ते बोझ हैं। और एक अखीरला प्रमाण कह के फिर मैं अज दे कीर्तन दे वलनू वधांगा। गुरु महाराज जी ने आख्या है, बिन संगति सब ऐसे रहे जैसे पस ढोर, जिन कीते तिसे न जाने बिन नावे सब चोर। कहते सारे ही चोर हैं, नाम तो बिना हरेक इंसान चोर है। और इसनू जहां ते असी इतना लाइटली लवांगे कि सुन के चले जावांगे पर असी महसूस नहीं करांगे कि गिल्टी फील नहीं करांगे कि असी चोर हां या मैं चोर हां, पर जे महसूस करांगे कि महाराज जी ते झूठ नहीं आख सकते, गलत नहीं आख सकते, अतकथनी नहीं कर सकते, गुरु बाबा जी की गल कही हुई दे विच सच है, तो इसका अर्थ अगर मेरे पास नाम नहीं है तो फिर मैं चोर हां। अगर ये तीर लग जाएगा तो फिर वो बेचैन करेगा, वो दर्द दबेगा कि मैं गुरु महाराज जी दे पास गया, गुरु महाराज जी ने मेरे जीवन नु देख के एक नतीजा निकालिया है कि तू चोर है। तो कितनी बड़ी तौहीन, कितनी बड़ी चोट। पर रियलिस्टिकली असि अपने आप नु चोर समझांगे नहीं, जिस तरह के शब्द सिर्फ कहण सुनन दे वास्ते ही हैं। पर जेड़े गुरु बाबे दे वचना उते इतना भरोसा प्यार यकीन रखते हैं वो इस गल दे नाल चोट खा जाते। महाराज जी ने आख्या बिन नावे सब, आप जी आखो की कहंदे हैं महाराज जी, बिन नावे सब चोर। वी मस्ट रिपीट दिस लाइन फ्यू टाइम्स ताकि साडे उते असर कर सके, एक अद्धी वारी कई नाले असर नहीं करना। एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू रिपीटिंग दिस लाइन एवरी डे, बिन नावे सब चोर। सब चोर सबना दे विच असीं भी आने हैं, जां को जिहड़े बाहर सड़कां ते फिरदे हन ओ चोर हन, वी आर आल्सो इंक्लूडेड। बिन नावे सब चोर, तो बड़ी भारी समस्या खड़ी हो गई। इथों तक असी कल विचारिया है, समझ लिया है कि नानक के घर केवल नाम, अगर नाम नहीं है तो असी चोर हां। जीवन च साडे असी सिर्फ वाहिगुरु दीयां वस्तुआं नूं चुराई जाने हां, कठियां करी जाने हां, जो साडा अपना नहीं है उसनूं असी अपना कही जाने। तन साडा अपना नहीं, वाहिगुरु दा है, प्राणी जाने ये तन मेरा, वो अपना बनाई बैठा है, सारियां चीजां नूं अपनियां बनाई बैठा है। तो किसी भी वस्तु होवे बना ली जाए अपनी, वो चोरी नहीं होंदी तो और की होंदा है। किसी भी चीज नूं संभाल के बह जाओ, कब्जा करके बह जाओ, तो फिर आखो ये मेरी है तो वो चोरी हो गई। बिन नावे सब चोर, इथों तक असी सुनिया है। अज दे कीर्तन दे विच जो दूसरा स्टेप है नाम नूं समझण दे वास्ते, क्योंकि महाराज जी की बाणी दे विच नाम नाम नाम नाम बहुत दफा आंदा, पर साध सिंह जी सोचण वाली गल ए है कि किसदा नाम। हुण ए पहलू आरंभ हुंदा है, इतना महाराज जी नाम का जिक्र करते हैं, सोचना पैंदा है किसदा नाम, क्योंकि नाम दे पिछे जां ते कोई ना कोई परसन हुंदा है, नाम दे पिछे जां कोई प्लेस हुंदी है, जां नाम दे पिछे कोई होर वस्तु हुंदी है, कोई ना कोई सबस्टेंस ते हुंदा है ना, जिसनूं असी कोई ना कोई नाम दिंदे हां, जिसदा नाम नाम वाला, उसनूं असी नामी आख सकते हैं, नामी जिसदा के नाम है। गुरु महाराज जी अपनी बाणी दे विच सिर्फ नाम दी ही गल नहीं करते, जिसदा नाम है, जो नाम वाला है,
जो नामी है उसका भी जिक्र करते हैं, क्योंकि जे सानू कल्ला ही नाम मिल जाए पर जिसका ये नाम है वो ना मिले तो फिर तो कुछ भी ना मिले। फॉर एग्जाम्पल सानू भुख लगी हुई है, सानू खाण नू रोटी चाहिदी है, रोटी तो सिर्फ एक नाम है, रोटी तो सिर्फ एक नाम है, निरा लफज रोटी दे नाल असी रख सकते हैं जब तक जिस चीज का नाम रोटी है वह ना मिले। सो जिस चीज का नाम रोटी है प्रशादा है जे ओ ना मिले तो सानू रज नहीं आ सकता, तृप्ति नहीं आ सकती। तो गुरु महाराज जी ये बहुत गहराई दे नाल विचारन वाला नुक्ता है कि जिथे नाम का जिक्र करते हैं उथे जिसका नाम है जो नाम वाला है उसका भी जिक्र करते हैं। हुण बाणी दे विच शब्द देखो आते हैं तू तेरा तेरे तेरिया तुम, ये जो लफज हैं ये तो किसे हस्ती नू ही एड्रेस किए जा सकते हैं, यानी किसे कोई प्रेजेंट है जिसनू असी तू कहने हैं। तो महाराज जी की बाणी दे विच थां थां थां थां ते उस हस्ती नू आख्या है तू मेरा पिता, तू मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा प्राता, इसका भाव कोई बींग है, कोई होंद है, कोई एग्जिस्टेंस है जिसनू महाराज जी तू कह के एड्रेस कर रहे हैं। नथिंगनेस नू तो तू नहीं ना कहा जा सकता। तो गुरु महाराज जी के पास मेरे कहने का मतलब यह है नाम है पर जिसका नाम है उस दे नाल महाराज जी का संबंध है, जिसका नाम है उस दे नाल संबंध है। इसे करके जिसका नाम है जो नाम वाला है महाराज जी एड्रेस करते हैं उसनु, कहते हैं नाम तेरो आरती मजन मुरारे, कहते हैं खूब खूब खूब खूब खूब तेरो नाम, उस प्यारी हस्ती नू उस नाम वाले नू कहते हैं कि तेरा नाम बहुत खूब है, बहुत खूब है, बहुत खूब है, खूब खूब खूब खूब खूब तेरो नाम, तेरा नाम बहुत खूब है। हुण कोई वस्तु कोई व्यक्ति कोई सामने ना होवे तो इंसान आकाश वाल नहीं देख के या हवा वाल नहीं देख के थोड़ो आखी जाएगा कि तेरा नाम बहुत खूब है। किसी दे नाल कोई कॉन्टैक्ट होएगा, किसी दे नाल कोई रिलेशन होएगा, कोई सामने प्रेजेंट होएगा, उसे नू ही आख्या जा सकता है कि तेरा नाम बहुत खूब है। सो इस तो भाव यह निकलिया महाराज जी के पास जिसका नाम है वो नाम वाला भी महाराज जी के पास है, और जो नाम वाला महाराज जी के पास है तो महाराज जी का उस दे नाम दे नाल भी प्यार है। गुरु महाराज जी अपनी बाणी दे विच अनेक थां उते आखते हैं तेरा नाम रतन कर्म चानन सुरत तिथे लोए, कहिंदे वाहिगुरु तेरा नाम जड़ा है वो रतन है, कहते हैं नाम तेरा आधार मेरा, तेरा नाम जो है वो मेरा आधार है। सो पॉइंट समझने वाला ये है कि नाम के पिछे कोई नाम वाला भी है, नाम के पिछे कोई नामी भी है, नाम के पिछे कोई अजिही शख्सियत भी है जिस दे नाम की इतनी बड़ी तारीफ है, उस शख्सियत दे नाल महाराज जी का प्यार है, उस शख्सियत दे नाल महाराज जी का कितना प्यार है आओ उसनु सुनो। कहते हैं

तू मेरो प्यारो तो कैसी भूखा है, भाव मेरिया सारिया भूखा तेरे प्यार नाल ही दूरियां दूर होंदिया। सो नाम वाला जो है उसके नाल महाराज जी का प्यार है। इसे करके कहते हैं मेरे प्रीतमा हों जीवा नाम ते आए। ए मेरे प्रीतम, प्रीतम बहुत प्यार दे नाल आख्या होया एक एक्सप्रेशन है। ए मेरे प्रीतम, तेरा नाम जदों तक मेरे ध्यान च है मैं अपने आप नूं जिंदा महसूस करना, ते तो विछड़ना मेरे वास्ते मरण समान। तू मेरो प्यारो तक कैसी भूखा, और आते हैं अमृत प्रिया का नाम। प्रिया प्यारा कहते हैं मेरे प्यारे का जरा नाम है ना वो अमृत है, वो मृत्यु तो रहत है, इतना महान है। सो इत्थे एक प्यारा आंदा है, इत्थे एक हस्ती आंदी है, इत्थे एक ऐसी शख्सियत आंदी है जिसके नाल महाराज जी का प्यार है, अते उस प्यार करके महाराज जी नूं उसका नाम प्यारा लगता है। सात संगत जी, मैं आप जी के सामने थोड़े जहे प्रमाण रखन लगा हां जिन्हां च बार बार बार बार लफज आएगा नाम प्यार, नाम प्यार, नाम प्यार, नाम प्यार। ध्यान नाल सुनना, एक ही लफज आएगा बार बार हरेक लाइन च, नाम प्यार। कहते हैं

गुरु महाराज जी के पास वो नाम वाला है, उस नाम वाले के नाल महाराज जी का प्यार है, उसके नाल मोहब्बत है। इस करके गुरु महाराज जी नू उसका नाम प्यारा लगता है। इथों दो नुक्ते सिद्ध होंदे हन। नंबर एक कि गुरु महाराज जी का अगर उस नाम वाले दे नाल प्यार है तो गुरु महाराज जी ही सानू उस नाम वाले तक ले जा सकते हैं। गुरु महाराज जी ही उस नाम वाले नाल साडा प्यार पवा सकते हैं, क्योंकि प्यार किसी ना किसी एक्सपीरियंस के बेस उते होंदा है। उस नाम वाले दे नाल सानू मिलाणगे, उस नाल मिलन दे नाल जो सानू एक्सपीरियंस होएगा वो इतना वंडरफुल होएगा, इतना मैजिकल होएगा, इतना मिरेकुलस होएगा कि इंस्टेंटली वी विल फॉल इन लव विद दैट। पर जब तक असी उसनू मिलांगे ही नहीं, उस नाल प्यार किवें हो सकेगा? तो प्यार पाउण दे वास्ते कोई विचोला चाहिदा है जिहड़ा उसनू जानदा होवे, उस तक पहुंच रखदा होवे अते दूसरे नू उस तक लजा सकदा होवे। उही प्यार पवा सकदा है। हुण असी महाराज जी तों आओ गुरबाणी चों पुछीए, सच्चे पातशाह साडी समस्या यह है कि साडे पास प्यार नहीं है। आप जी का तो प्यार है पर साडे पास प्यार नहीं है, तो फिर साडा प्यार किस तरह पवे? हुण सवाल मेन इशू यह है, महाराज जी आप जी दे घर रब ही रब है और उसका नाम ही नाम है, आप जी नू वो भी प्यारा है, उसका नाम भी प्यारा है, पर साडे ते तरस करो ना, तो असी उसनू जानते हैं ना, साडा उसके नाल प्यार है। क्योंकि जे प्यार होवे तो फिर यह किस तरह हो सकता है कि साडा उसका नाम जपन च मन ना लगे? यह किवें हो सकता है? जे प्यार होवे तो उहदे नाल मन ना लगे? जदों प्यार हो जाता है उदों टाइम एंड स्पेस दोनों भुल जाते हैं। सानू नाम जपन लग्या नू कदे लत थक जाएगी, कदे कमर दुखेगी, कदे कुछ होएगा, कदे इचिंग होएगी, और असी टाइम देखते रहांगे। एक घंटा सानू नाम जपन लिए आख्या जाए तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम है। 3 घंटे जी असी पिक्चर आराम नाल देख सकते हैं। सो साडा प्यार नहीं, लेट अस एडमिट दिस। गुरु महाराज जी का प्यार है उस नाम वाले दे नाल, ते जिस दे नाल प्यार होवे उहदा नाम भी प्यारा लगता है और उस दियां सारियां ही चीजां प्यारियां लगदियां हैं। मेरा नाम ही नहीं, जिस दे नाल प्यार होवे उसकी हर वस्तु प्यारी लगती है। इस करके महाराज जी ने आख्या है, तेरे नाम अनेकां रूप अनंता कहन न जाई तेरे गुण केते। उस दे नाल प्यार है करके कहंदे हन तेरे अनेकां तेरे च गुण हन, क्योंकि जिहदे नाल प्यार होवे उच ही गुण नजर आया करदे हन। जिहदे नाल प्यार ना होवे उच भावें गुण भी होण तां भी अवगुण दिसिया करदे हन। महाराज जी कहंदे हन तेरे अत्यंत गुण हन, अते उस दी हर चीज तो महाराज कहंदे बलिहारी कुदरत वसिया, कहंदे तेरी कुदरत तो भी मैं बलिहार हूं, तेरी कुदरत तो मैं बलिहार। ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि फाउंडेशन जो है वो प्यार दी है। महाराज जी का उस नामी दे नाल प्यार है, उस दे नाम नाल प्यार है, उस दी रचना दे नाल प्यार है। इत्थों तक के असी तो अपने आप ते कई दफा तरस करते हैं कि सानू लाइफ क्यों मिल गई है, वट टू डू विद इट, we don't know. Sometimes we even go to the extreme of taking our own life. Par Maharaj ji aakde han, wah kasam tu wah, jin rach rachna hum kiye. Us de naal pyar hon karke Maharaj ji adore karde han ke tu kamal hai, kis tarah da tu sanu banaya hai. Kehnde han wah kasam tu wah, jin rach rachna hum kiye. Jisne rachna rach ke sanu banaya hai.
कितनी खूबसूरत रचना है। अते महाराज जी नू वाहिगुरु नाल प्यार होण करके उसकी हर चीज इतनी प्यारी लगती है कि गुरु महाराज जी इस संसार नू कहिंदे हन ये अमृत की वाड़ी है, ये अमृत का एक बगीचा है। पर सानू थोड़ा लगता है अमृत का बगीचा, साडे लिए उन्होंने कुछ होर आख्या। हुण साहिब सिंह जी कीर्तन का अज दे कीर्तन का जो आखिर नुक्ता आप जी की सेवा च मैं रखना चाहना हाँ, वो एक समस्या है, एक इशू है कि महाराज जी का तो प्यार है, महाराज जी उस नू जानते हैं वह कित्थे है, महाराज जी नू उसकी हर वस्तु के नाल प्यार है, महाराज जी उसके प्यार च इतने भिजे पे हैं कहते हैं आखा जीवा विसरे मर जाओ, कहते हैं तू मेरे लालन तू मेरे प्राण, तू मेरे प्राण है, तू मेरे लालन तू मेरे प्राण, तू मेरे साहेब तू मेरे खान, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत, तू मेरा प्रीतम तुम संगीत, तू मेरी पत तू है मेरा गहना, तुझ बिन निमख ना जाई रहना, ए प्यार है, ए प्यार है। तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंदप तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई तां भाव के हा काला जी, ए प्यार है। मेरा मन एक ही प्रेम मांग है, मेरा मन अपने उस एक प्यारे नु ही चाहता है, और कुछ चाहता ही नहीं है, ये है प्यार। उहा प्रेम प्री केंदन ओ प्री जो प्यारा है महबूब है केंदे बस ओ उसका मेनू प्यार ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इतना प्यार। एक सिनेरियो है कि परमात्मा कहता है कि आप जी प्यार दी जगह कुछ होर ले लो, प्यार ही क्यों मंगते हो, कुछ होर ले लो, और बहुत कुछ दे सकते हैं, की दे सकते हो, हीरे लाल जोहरात मण मोती बहुत कुछ दे सकते हैं, ये ले लो। महाराज जी आखते हैं हुण सुनने वाला शब्द है, कहिंदे अत्यंत चीजा खिलारियां पईयां हन सामने, ते अकाल पुरख पुछता है तुहानू की चीज चाहिए है, ते विचकार ही एक थां ते उन्होंने प्यार रख्या है। ते महाराज जी आखते हैं उस वल उंगली करके ओ ऊहा प्रेम प्री, कहते ओ प्री का प्रेम ही चाहिए है, कनक माणक गज मोतियन लालन, कनक यानी सोना, माणक कनक माणक स्टोन्स बहुत कीमती कीमती स्टोन्स, कनक माणक गज हाथी, कनक माणक गज लालन डायमंड्स, कनक माणक गज लालन नह नह नहीं, कहते नहीं तीन बारी आख्या है, कहते इन्हों चो मैनू कुछ नहीं चाहिए सिर्फ प्यार चाहिए, तेरा प्यार चाहिए। कनक माणक गज मोतियन लालन, ना मैनू हीरे ना मैनू पर्ल्स ना मैनू स्टोन्स ना मैनू डायमंड्स, कुछ नहीं चाहिए, की चाहिए है उहा प्रेम प्री, सिर्फ तेरा प्रेम चाहिए। कनक माणक गज मोतियन लालन नह नह नहीं, राज ना भाग राज ना भागन ना हुक्म ना साधन, किच किच ना चाहिए, कहने इन्हों चो मैनू कुछ नहीं चाहिए, तो यह है प्रेम। सो महाराज जी दे कोल है प्रेम, साडे कोल है कुछ भी नहीं, असी खाली हैं, साडे कोल की है अंदर खाली प्रेम बेन, दैट्स व्हाट वी है। महाराज जी ने बाणी चाखे अंदर खाली प्रेम बिन आओ सारे आखिए, ये साडी अवस्था है, ये साडी कंडीशन है, ये साडी हालत है, साडे कोल पहरावा हो सकता है।

है साच कहो सुन ले हो सब है जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। पर सवाल पैदा होता है कि प्रेम हाउ टू गेट इट, किस तरह प्राप्त करिए। ये साढ़े अपने वश की तो गल नहीं, असी तो अंदरों पत्थर बने पए, साढ़े अंदर तो कठोरता है, साढ़े अंदर प्रेम नहीं है। तो फिर एक दर्द उठती है, गुरु महाराज जी कृपा करके दसो साडे अंदर प्रेम का चश्मा किवें फुट सकता है, साडे वर्गियां दे दिलां दे विच जो कि सुके पए हन, सुन्ने हन अंदरों खाली हन, साडे अंदर प्रेम लविंगनेस ओ प्रेम का जो फुल है वो किवें खिल सकता है। अज दे कीर्तन सिर्फ इसका जवाब देना है कि नंबर वन चीज जानन वाली है कि नाम ते प्यारा ता ही लगेगा, नाम जपया उदों ही जाएगा जदों जिसका नाम है उसके नाल प्रेम भी तो पैदा होवे। हुण प्रेम किवें पैदा होएगा, गुरबाणी इसका किस तरह जवाब दिंदी है, उसनों सुनो, फिर असी कीर्तन अज का समाप्त करांगे। महाराज जी आखदे हैं

संतां संगत मिल रहे, क्योंकि संत प्रेम ही प्रेम हुंदे हन, प्रेम रूप हुंदे हन। संत स्वाय प्रेम तो अलावा और कुछ नहीं। ताई तो महाराज जी ने आख्या है, ना कोई बैरी ना है बेगाना, सगल संग हमको बनाई। कहते मेरी सारे नाल ही बनती है साधी, ध्यान नाल अपनी जिंदगी देखो, कदे किसे नाल नहीं बनती, कदे किसे नाल नहीं बनती, कदे किसे नाल नहीं बनती, साड़ी बनती किस दे नाल। पर गुरु बाबा जी आखते हैं सगल संग हमको बनाई, कहते मेरी सारे दे नाल ही बना दी है, मैं सारे नाल ही प्यार है। कहते प्रेम किवें लग सकता है, इसनों सुनो और नोट कर लियो बाद दे विच। कहते हैं संता संगत मिल रहे ता सच लगे प्यार। इस तो भी होर स्पष्ट सिंपल करके आख्या, कहते हैं संत सहन

नहीं है उसमें जपिए के में, जब प्यार ही नहीं है उसमें जपिए के में। पहली अद्धी पंक्ति आख्या है मन रे राम जपो सुख होए, उसनु जप के सुख होएगा, पर जब उसके नाल प्यार ही नहीं है तो उसमें जप के कह लीए ये मनुआ दह दिशा हमारा वो कैसे हर गुण गावे। ये मन ते दस दिशा दे विच दौड़ा फिरदा है किवें उहदे प्रेम नाल गुण गावे, प्रेम ही नहीं है। पर अगली लाइन के अद्धे हिस्से दे विच फिर जवाब दे जांदे हन कि प्रेम किवें मिल सकता है। कहिंदे हन मन रे राम जपो सुख होए, परंतु अगला हिस्सा पंक्ति का कहिंदे हन

any number. And something surrounding you. जिसने ए मंग मंग ली है उसने यहां सारिया मंगा पूरी और केड़ी मंग नानक को ब्रह्म माया कर सच देव क्योंकि सच सदा रहने वाली पूर्ण बिखुटे नानका पूर्ण में हो गया पूरे पदार्थ में भी नहीं रहे तो इस वास्ते हमें पूर्ण बिखुटे नानका पूर्ण सच और सिर्फ भी है पातशाह में सच्ची वस्तु जरा सच न जुड़ गए उसका जीवन भी सच्चा उसके कर्म भी सच्चे जिसके कर्म सच्चे हैं उस इंसान को दुनिया सबका आधे रस्ते चंगे रस्ते पे सच्चे मार्ग पे चलने वाला इंसान सच्चे कर्म करने वाले फरमाते हैं सच्चे मार्ग चल देना पुष्ट करे सच जरा सच पे बोल रहे और दुध पे जरा झूठ पे बोलता है और जहर पे सच बोलने जेडा पुन कोई नहीं झूठ बोलने जेडा पाप सच पुराना ना नाम ना दे तो सच की है उस वाहिगुरु का नाम उस वाहिगुरु का पवित्र नाम नाम की वाहिगुरु जिस नाम ने उस नामी की प्राप्ति कराऊंगी वो नाम केड़ा है वाहिगुरु वाहिगुरु गुरु मंत्र है जब हमें वाहिगुरु गुरु मंत्र है जब हमें उस वाहिगुरु को मिलने वास्ते साधन वाहिगुरु जिस तरह अंब का बूटा उसका नाम भी अंब और जड़ा उसके उत्ते फल लगा है उसका नाम भी अंब पर सानू केड़ा अंब चाहिए फल तो फल की प्राप्ति वास्ते पहला अंब बूटा नहीं फिर उसकी राखी करनी पैदी संभाल करनी पै फिर सानू जरा अंब फल है वह प्राप्त इसी तरह उस वाहगुरु की प्राप्ति का साधन ये वाहगुरु शब्द वाहिगुरु गुरु मंत्र है जब हम ये गुरु का मंत्र बाबा ईसर सिंह जी महाराज वचन करते सन भाई ये गुरु मंत्र जो वाहिगुरु है ये दरगाही टिकट दरगाही दुनिया भी सफर करना होने ता भी टिकट दी जो टिकट तो बगैर सफर नहीं हो सकता और इसी तरह उस दरगाह जाने वास्ते मार्ग तक पहुंचने वास्ते भी सानू टिकट चाहिए एक दिन रस्ती रस्ती दुनिया में छड़ के उत्तर धियां त्याग के किसी लंबे पेड़े इंसान ने किसी ने पूछा मारे ऐ धन गुरु अर्जुन देव पातशाह पहला यह दसो भाई जिस रस्ते पे एक दिन इंसान भी तुर रहे हैं मारा पहला दसो कितने वीर उसके मोह कितने रिया सब बॉम्बे जाना मीला का पता
ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਤਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੀਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਟਿਕਟ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਸੀਟ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਬਿਸਤਰਾ ਵੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਫਲਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਭ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਪੈਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਵੀਲ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ।

कोई ऐप नहीं, जिस मार्ग से एक दिन तुरना है, गरीब ने भी तुरना है, अमीर ने भी तुरना है, कंगाल ने भी तुरना है, राजे महाराजे ने भी तुरना है। कौन अपन महाराज तांता इतने गलते नहीं रह गए, कारा भी ये थे, मकान भी ये थे, जमीना भी ये थे, पुत्र धियां ने भी साथ नहीं देना, कई वस्तु मेरे नाल जाएगी तो हजूर को

गोविंद ना भजे अहं बुद्ध माता जन्म जुए ज्यों हारे। नाम अमोला प्रीत नत स्यों पर निंदा हितकारे। छापर बांध सवारे प्रण को द्वारे पावक जारे। कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन से डारे। मोढ़े वस्त्र का

के बोहित नाम के जहाज साहेब धनगुरु अर्जुन पातशाह सतगुरु जी अपने मुखार बिंद तो अपनी रचना तो इना बचना दा उच्चारण कर देने हजूर फरमान कर देने प्यारिया गुरु नाल प्रीत किदां दी लाउनी है मालक नाल स्नेह किदां दा जोड़ना है साहब जी सानू ओ रस्ता ओ मार्ग ओ प्यार भरे बचना नाल उन्हां जुगतियां नाल सानू ओ रस्ता दसते ने जिस रस्ते ते जिस मार्ग ते जांदे आ तू गुरु नानक नू मिल सकना साहब कृपा करदे ने बख्शिश करदे ने कलजुगी जीवां ते भाई हजूर कहंदे ने

साहब उपदेश करते ने प्यारे अहंकार नहीं करना, अभिमान नहीं करना। धन गुरु रामदास पातशाह हजूर कहते ने अहंकारिया निंदका पिठ दे नाम देव मुख लाए। नाम देव वर्गिया नू सतगुरु ने अपने हिरदे नाल ला रहा, अहंकारिया नू पिठ दे दिती मुख नहीं लाया। जिना नाम जपया सिमरन कीता भावे कोई वड्डा है भावे कोई नीवे, लेकिन भाई सिमरन करन वालिया नू नाम जपन वालिया नू सेवा करन वालिया नू मेरे साहब अपने गल दे नाल ला लेंदे ने। हजूर कहिंदे ने मान ना कीजै शरण परी जाए, हंकार ना कर प्यारे अभिमान ना कर, गुरु दे चरणा विच उदी शरण विच आ जाए।

गुरु नानक दी मोर ला के घन गुरु अर्जन पातशाह साहब कृपा करके आंदे ने प्यारे कौ नानक छंत अनंत ठाकुर के उस मालिक दे कितने मैं गुण गावां बेअंत है मेरा पातशाह बेअंत है मेरा मालिक बेअंत है रहमतां दा साईं कितने गुण गायन करन हजूर बाणी विच कहंदे ने।

जे भाई सत्तां समुंदरां दे पानी दी स्याही बना ले जावे। कलम करो बन राय, सारे जंगल ते सारी बनस्पति दियां कलमां बना लिया जावन।

धन गुरु अर्जन पातशाह। साहब अपने मुखार बिंद तो आंदे ने एक घड़ी दिन समोको बहुत भयारे, ये मेरे मालिका एक घड़ी भी एक पल भी, तेथों जे मैं बिछड़ जाना ते इंज लगदा है कितने ही जुग बतीत हो गए ने, कितना समा लंघ गया।

एडी प्यास है तेरे दीदार दी, एडी आस है तेरे दीदार दी, निर्या मालका कर कृपा मेरे दे। को ऐसा संत मोको फिर है मिला, कोई भाई गुरुदा प्यारा मेनू मिला दे, कोई ऐसे गुरुदेव प्यारे नाल मेल करा दे कि तेरे दर्शना दी जड़ी आस लगी हुई है वो मिट जावे। आओ भाई अरदास करिए, गुरु चरणा च तरला करिए। गुरु अर्जन पातशाह साहब अपने रसना तो आंदे ने मन ऐसा नहीं करे, ऐसी प्रीत कर ले जिवें मछली ने पानी नाल कर ली। चात्रक ने पपिए ने स्वाति बूंद नाल कर ली है, भंवरे का प्यार फुल दे नाल है सुगंधी नाल है। जेड़ी प्रीत कदी टुटे ना पातशाह मेरे मालका एहो जी प्रीत कर, एहो जी कृपा कर, मेरा मन भी तेरे चरणा नाल।

इस वास्ते ही पालना, इनू विषय विकारा च जाया ना कर, इनू लड़ाई झगड़िया च वेस्ट ना कर। मनुष्य जन एक शरीर रोज रोज थोड़ा मिलना, किसी महापुरुष ने तो लिखा है शरीर ए तो रब दे मिलन का दरवाजा है, जिदे विचो लंघ के साई नू मिल, फिर इनू जाया क्यों करी, धड़े कम निंदिया चुगनी, फिर मिल जाएगा नहीं। दिल दरवाजा रब का, और यार ना इसनू ढाल टठा औखा बनेगा, फिर मिलेगा कि और का कोई साथ नहीं। मनुष्य जन्म प्राप्त करके ही तू भक्ति कर सकता है, ते नाम जप के तेन नामी मिल सके, तो नानक ये तत् मिल सके। तो सिद्धांत भक्ति तो बगैर उस नामी नू मिलने वास्ते उदा नाम ही, ते जपण का साधन मनुष्य जन। बाबा जी बचन करते सन 84 लख जून, मानुष जन्म जून नहीं, ये 84 लख जून का भाष बाण जी लिखा, इस धरती में तेरी सिख रही, तू तो हुक्मरान है 84 लख जून का, पर ख्याल करी तेन बादशाह बना के भेजे, बादशाह वाले काम करी, किधर नीचा वाले काम ना कर, कुतिया बिलिया वाले काम ना कर, इंसान हो के इंसान ना हो। पर कई लोग ऐसे वेखण इंसान पर कर्म उन्होंने पशुआ करतूत पशु की मानस जहाज, मानस जहाज नहीं। तो इस वास्ते जेड़ा पत्ता डाली नालों टुट गया उन्हें फिर नहीं गई, मनुष्य जनो एक वेरी हथों खुश गया, फिर पता नहीं फिर कदों से दिया। एक गोल्डन चांस उस वाहेगुरु ने मिल तेरी संभाल। एक मेरी भाई संता सिंह जी बाबा जी ने हजूरी लागी सीधी धारना पढ़ते सन, दास ने दर्शन की, अजकल भाई देव सिंह जी कीर्तन करते हजूरी शामा दे दीवान भाई संता सिंह ने धारना पढ़ी, बिन हर भजन नहीं छुटकारा देख ले विचार कर। उसने दो चार बेरी पढ़े ते बाबा जी बिरागर लगा के बेहते, अकाल पुरख नाल जुड़ जाते बिरागर राजू संता सिंह की पढ़े है गरीब नवाज, बिन हर भजन नहीं छुटकारा देख ले विचार कर। बाबा जी कहने लगे अजय विचार करने की गुंजाइश है, आखो सी अजय विचार करने की लोड़ है। बाबा जी कहने लगे जेड़ी विचार गुरु नानक ने पहला कर दिती है वो आपा की करनी है, आपा तो अमल करना है। विचार विचार भी चंगी चीज है, पर जेड़ी विचार बापू ने कर दिती फिर सिख का फर्ज है उसे अमल कर। संतासियां विचार की लोड़ है, भाई संतासी खामोश हो। बाबा जी कहने लगे पढ़ो की

कोई रोज रोज नहीं मिल सकता। सेवा मिल गई है तो तरी तदे तो मार्ग मकसद गंगा राम रात दिन भांडे मांझी जाते गुरु के दर्शन की उड़ीक रात दिन उड़ीक कर जाए कदो भागा वाला दिन चाहिए धन गुरु अमरदास पातशाह जी के दर्शन गुरु बख्शिश कर जिस तरह बख्शिश हो रही गंगा राम की सेवा थाएं करा सामान क्योंकि कहीं ने इशारा किया समा सुख की घड़ी का पता ही नहीं आप खुश रही दुख की एक घड़ी आ जाए कई चीज नहीं आ जाती पता ही नहीं लगे किस तरह से यही है मान गुरु अमरदास पातशाह आप सारे गुरु मार्ग ने मेहनत की थी तो आप जो सेवा मिल जाए गुरु का भी करो इस उड़ीक आप शामा तक इंतजार करिए पता गंगा राम के सदके सानू ही दीदार का किरका मिल जाए फिर साडा कीर्तन कीता सुनिया पर गुरु घर किसी की कामना जाया नहीं जिसने भी कर तन मन धन ना जिसने भी सेवा की थी है अदूर फरमाते जान के सिमरन सब कुछ पाइए बिरथी उसी भी कामना कर अपनी कामना भी गंगा राम की कामना किस तरह गुरु ने सकते अमृत साढ़े पाई साढ़े जीवन का एक आशा जी अमृत वेला सच नाम वड़े आई जिदा नाम ही अमृत वेला है वो उसद की कल शाम समय अनुसार आओ कल पूर्णमासी क्योंकि पूर्णमासी का नाम लीए तो गुरु नानक पातशाह खाने सामने पूर्णमासी गुरु ने मान बता पूर्णमासी ऐसी पूर्णमासी आई रब प्रगट हो गया खुश ताइयो बाबा ने सिंह जी उथे 24 घंटे का सत्संग है डेली कोई आए जाएगा पर पूर्णमासी का समाज खास होता है दास इंडिया विच होवे बाबा जी की बख्शिश द्वारा नानक सर हाजरी भरदा ऐसी साई की प्रेरणा अनुसार पूर्णमासी थोड़े को जुड़े हुए हो तुहाडे दर्शन करके मैं भी उस पवित्र पावन याद हिरदे च वसावांगा ते सुरत नानक साहब पहुंचा के दर्शन कर पूर्णमासी आप आओ गंगा राम जी साखी सुन के अपना जीवन सेवा करो जिस गुरु ने सानू ते दात बख्शी ओदा शुकराना अदा करिए ते एही अरदास करिए भले अमरदास गुरु तेरे तेरी ते तेरी तेरी रहमत है मेरे पातशाह की तासे कलयुगी जी थां थां ते कलयुग रुकावटां पे माया कई रूप धार के भी छलदी किथे आए अजे आ गए मार्ग दे दारू प्राप्त करके गुरु नु पा गए आखोश गुरु नु पा गया जीवन सारे मिल के करिए उस तो प्राप्ति कर गुरु नानक पातशाह आप जी ने करम करम सारे गुरसिख माई पाई अनुगुरु राम दा अमरदास पातशाह जी आप जी का आगमन गुरुपुरब मना
ਬਖਸ਼ਿਆ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਆਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਉਂਡ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅੰਤਰ ਜਨਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾਨ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ

सुदला संचोरासी ए भी कर कर रहा बड़ी आर जा फिर फिर जल में अर्शो संग न जहा राजलीला राजन की रचना करया हुकम अपारा सृज सौणी चंदन चोरा नाक खोर का द्वारा हर तीर्थ साध संगत है सिर कर्म से कर्मा कौनान कथित पयो पराप जिस पूर्व लिखे का तेरो सेवक यह रंग माता अयो कृपाल दीन दुख भंजन हर हर कीर्तन एहो मन राता तेरो सेवक यह रंग माता अयो कृपाल दीन दुख भंजन हर हर कीर्तन एहो मन राता।

वह करके अर सात समुद्रन की मन कहो काट वनस्पति सगरी दिख बहु के लेखन काज बने हो सारसता पकता करके जब कोट गणेश के हाथ रखे हो।

प्रभु दे प्यार दी, परमेश्वर दे प्यार दी आपां विचार कर रहे सां। होशियारपुर दे विच रहण वाला देव सिख जिहदी बच्ची 11-12 साल दी, जिन्हों पता लगा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फुलां नाल बड़ा प्यार करते ने, ता प्यार मन विच ऐसा उपजिया, ऐसा प्यार मन विच आया, आप फुल बीजिया, चकोदरी दा फुल पत्तियां निकलाईया। ता इस बच्ची ने कपड़े दी एक गुत्थी बना के फुल दे उत्ते पा दीती, कोई पंछी इस फुल नू खराब ना करे, क्योंकि ए फुल आनंदपुर साहब लैके जाने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे चरणा नू मत्था टेक के ए फुल भेट करना। इस बच्ची दे मन दी ये भावना, फुल जद पूरी तरह खिल गया, आनंदपुर साहब जाण नूं भी 2-3 दिन बाकी रह गए ने, अज ये बच्ची अपने पिता दे नालों अपनी माता दे नालों पहला ही बाग विच आ पहुंची। बाग विच आके रोज दी तरह बाग दे जिस खिते विच ए चकोदरे दा फुल लगा, ए बच्ची उत्थे आ पहुंची, फुल दे उत्तों गुत्थी उतारी, फुल वल देखिया, सोहना फुल खिड़ रहे है। उधर हाले सूरज चढ़िया सी, सूरज दियां किरणा सुनहरे रंग दियां इस फुल ते पईयां, और ए फुल सोने दी तरह चमक उठिया। एक सवेर दा वेला, एक सूरज दियां पहलियां सुनहरी किरणा फुल ते पईयां, जिथे फुल खिड़िया सोने दी तरह चमक उठिया, उस तरह ए जिहड़ी बच्ची है फुल देख के एदा मन भी खिड़ गया। उम्र बेशक छोटी पर पिता दे कोलों गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे गुण सुन के कथा कहानियां सुन के मन विच बड़ा प्यार सी। इस बच्ची ने फुल वल देखिया, मन गुरु दे चरणा विच जा पहुंचिया, हाथ जोड़ के अखां बंद करके फुल दे कोल बैठी और बेनती करती है, ऐ कलगीधर पिता कृपा करनी, ए जड़ा फुल

जिस तरह भी आया उस बच्ची दी बेनती अपनी कलम द्वारा दास ने इस तरह लिखण दा यतन कीता। इस नूं कविता समझो या उस बच्ची दे मन दा वैराग वलवला समझो। मानो वो बच्ची हाथ जोड़ के अरदास पई कर दी है, मैनू तेरे नाल इन्ना है प्यार मेरे सतगुरा। नीले वाले आ, बाजां वाले आ, फौजां वाले आ,

दूसरे पासे बाग दा मालक जसवंत राय बाग दी सैर करन आया। फुल तां होर भी बड़े सन, पर जद इहदी निगाह इस चकोदरे वल गई, अपने नौकर नूं कहण लगा, कामिया फुल ते होर भी बड़े ने, पर इहो जिहा फुल सारे बाग विच नहीं, जा ए चकोदरा तोड़ के लिया। ओ कामा अपने मालक दा हुक्म मान के फुल तोड़न वास्ते तुरिया। ओ बच्ची जड़ी दूर पानी पई भरदी सी बाल्टी विच, उसने नौकर नूं फुल वल जांदा देखिया ते समझ गई कि नौकर फुल तोड़न चले। इधर नौकर ने फुल नूं हाथ पाया फुल तोड़न वास्ते, उधर उस बच्ची ने ऊंची सारी एक तरला लिया, ऊंची सारी आखिया, हाय ना तोड़ वीर वे, ऐ वीरा फुल ना तोड़ी। इस बच्ची दी आवाज विच इन्ना दर्द सी, तरला सी, कांबे दा धीरदा कंब गया। उदा हाथ पिछ आया, पर जसवंत राय वो गुस्से विच कहन लगा, कामिया कोई फुल क्यों नहीं तोड़दा, तैनू क्या फुल तोड़। कामे ने फिर हाथ वधाया फुल तोड़न वास्ते, हुण उस बच्ची ने बाल्टी उथी सुट दिती, ज्यों उथों भजी कहिंदे आ रही है, हाए ना तोड़, हाए ना तोड़ वीरवे। ते कामा उहदा हाथ

या उस लड़की का? तेनू क्या फुल तोड़ मालक दा हुक्म कामे ने ते मनना है। उस कामे ने फुल नू फिर हथ पाया बच्ची भी कोल पहुंच गई। इधर कामे ने फुल तोड़िया उधर उस बच्ची ने आखरी वरी किया हाय ना तोड़ कहंदी हुई धरती ते डिगी ते बेहोश हो गई। ए नजारा देख के जसवंत राय हैरान हो गया। उस अपने महल नू मुड़ पिया पिछे पिछे और नौकर हाथ विच फुल फड़े है ओ भी तुरदा जा रहे है पर उस नू इस तरह जापता है जिवें फुल विचों इको ही आवाज आ रही है हाय ना तो हाय ना तो। जसवंत राय महल विच जाके बैठा कामे ने ओ फुल सामने रखिया हाय ना तोड़ हाय ना तोड़ कहंदा होया नौकरी छड़ के ही उत्थों चला गया। कहंदा जा रहे है मैं अपराध कीता फुल नहीं तोड़िया एक बच्ची दी मैं जिंद तोड़ी नौकरी छड़ के भज गया। जसवंत राय हैरान हो गया पर उस दे कन्ना विच भी इको ही आवाज गूंज रही है हाय ना तो हाय ना तो। उधर जसवंत राय महल विच बैठा परेशान है ता दूसरे पासे देव सिख पता लगा बच्ची बेसुरत है बाग विच ताज देव सिख अपनी बच्ची नू मंजी ते पा के घर लै गए। सिद्धकवान सिख ने बाणी नाल जुड़े हुए बच्ची नू मंजी ते पाए है। देव सिख एदी घर वाली कोल बैठे बाणी पै पढ़दे ने। रात पै गई सारा दिन बीत गया पर बच्ची नू होश कोई नहीं। जसवंत राय धन पदार्थ बहुत है गुरु तू बेमुख है अमृत नहीं छकया ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नू ठीक भी नहीं समझता। इन्हां ने हथियार चुके ने लड़ाइयां लड़दे ने इस करके मैनू गुरु ते भरोसा नहीं ते बेमुख होए है पर अज इस नू चैन नहीं आ रहा। रात पई जसवंत राय जद सुता एक सुपना देखिया हे हिंदुस्तान हिंदुस्तान दे जिन्ने भी लोग ने किसे भी जात दे किसे भी मजहब दे इस सारे लोग एक फुल्लां दी तरह ने कोई किसे रंग दा फुल कोई किसे रंग दा फुल फुल आसरे ने मैं करे ने खिड़खड़ा रहे ने। जसवंत राय सुपना देख रहे है हर फुल दे सराणे एक तुर्क पठान खड़ा है हर एक फुल दे सराणे एक एक तुर्क पठान खड़ा है। अचानक एक ऐसी हनेरी चली उन्हां तुर्का पठाना ने अपने पैरां थले इन्हां फुल्लां नूं लताड़ना शुरू कर दिता और हरेक फुल विचों इक्को ही आवाज आ रही है हाय ना तोड़ हाय ना तोड़। फुल लहूलुहान हो रहे ने ए तुर्क पठान फुल्लां नूं मसल दे जा रहे ने। अचानक पूरे वल्लों एक लिशकारा वजा एक गर्जवी आवाज आई खबरदार ठहर जाओ हुण कोई फुल्लां नूं हाथ ना पाणा। ए लिशक ने जो खबरदारी की थी वो फुल्लां नूं लताड़न वाले ठिठंबर गए कुछ मारे गए कुछ भज गए कुछ आप फुल्लां दी तरह निमाणे हो गए संभल गए सुधर गए। फिर आवाज आई रख लिया रख लिया। ए नजारा देख के
जसवंत राय दी अख खुल के सारा शरीर परसीने नाल भरे है। घरवाली नूं उठाया, जसवंत राय कहन लगा, भलिए लोके मैं बड़ा बेचैन हां। इस तरह जापदा है जिवें महल दी एक एक इट विचों आवाज आ रही है, हाय ना तोड़, हाय ना तोड़। मेरे कन्ना विच एहो ही आवाज गूंज रही है, हाय ना तोड़, हाय ना तोड़। पुरजा दी सुपना घरवाली नूं दस्सिया, ते घरवाली ने कहा, स्वामी जी जो आपां देखदे हां, जो सोचदे हां, ओह कई वारी सानू सुपने विच नजर आंदा। तुसी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं इस करके ठीक नहीं समझदे कि इन्हां हथियार चुके ने, ये लड़ाइयां लड़दे ने। पर स्वामी जी साधु संत हिंदुस्तान विच होर भी बड़े ने, वो भी पुन्ना नूं जानदे ने, पर उन्हां हथियार नहीं चुके क्योंकि हथियार चुकण दी जाच नहीं। ये जिहड़ा सुपना देखिया है, ये हिंदुस्तान दे लोग कई मजहबां दे, कईआं जातां दे, ये दुखी ने क्योंकि तुरक मुगल जुलम पै करदे ने, हिंदुस्तानियां नूं परेशान करदे ने। ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने हाथ विच कृपाण फड़ी हिंदू धर्म दी रखिया वास्ते, हिंदुस्तानियां दी रखिया वास्ते, मजलूमां दी रखिया वास्ते। जिहड़े इन्हां फुल्लां नूं हिंदुस्तानियां नूं दुख दे रहे सन, उन्हां दी ढाल गुरु गोबिंद सिंह जी बने ने। पति जी सानू चाहिदा सी असी भी गुरु दी फौज विच हाजर होंदे, सेवा करदे, पर असी ते गुरु तो बेमुख हो गए हैं। ए गल्लां सुन के जसवंत राय कहन लगा, हां तू सच कहनी, गुरु लड़दा पिया साडे लोकां दे भले वास्ते।